0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া ছয় বজাৰ পৰা ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে বিশাল শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या

0: मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और

0: अभी रजिस्टर करो PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
5: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोह मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi becomes longest serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি, 12:05ত ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে লভলীন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का

0: फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on the 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 64. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. BJP National President Nitin Naveen has said that Prime Minister Narendra Modi has written a new history across the entire country. Talking to reporters after offering prayers at a temple in New Delhi, he said that under this remarkable leadership, 25 crore families have been lifted out of poverty. Mr. Naveen said, over the past 12 years, the Prime Minister has worked for the welfare and development of every section of society, with a particular focus on women's empowerment. Union ministers including Amit Shah, Dr. S. Jayashankar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman and Shivraj Singh Chauhan, among others, have wished Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest continuous serving elected Prime Minister of India. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that these 12 years of Prime Minister Modi have been about restoring India's pride, cultural renaissance and freeing the nation from the mentality of servitude. Dr. Jayashankar noted that this achievement reflects the enduring trust and confidence that the people of India placed in PM Modi's leadership, vision and commitment to national development. Ms. Sitharaman added that during this period, the NDA government under PM Modi has delivered bold reforms and has implemented several initiatives with unprecedented pace and scale. She emphasized that Prime Minister Modi provided decisive and strong leadership through a series of challenging times that the nation has faced. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government's completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Our correspondent has more details on the meeting.
2: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
1: The government has refuted several social media posts falsely claiming that the Reserve

सैनिक भाई, हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरमय गीतों का सुहाना सफर। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पलों में हम सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर हम सुनेंगे फिल्मी नगमे। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम सुनेंगे तरंग कार्यक्रम, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, दिन के 2:00 से मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी, और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं पहला गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में गर्व फिल्म से। बोल है जलीस शेरवानी के और संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। जुबिन गार्ग की आवाज में गुड बॉय बैड बॉय फिल्म से, बोल है समीर के और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

0: सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं गोल फिल्म से आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की आवाजों में।
1: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत रिफ्यूजी फिल्म से। बोल है जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम फिल्मी नगमे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

हर दिन की तरह 12:10 पर हम हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में और सुनवाएंगे दिन का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम साज और आवाज। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

1:10 पर कार्यक्रम स्वर छाया, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, 2 बजे से अंग्रेजी

और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम होगा गीत रंगीले और इसी के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे। पहला नगमा हम सुनेंगे बाजार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

सनिक भाइयों, फिल्मी नगमे कार्यक्रम के अंतर्गत अगला नगमा आइए सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, अब से आप हमारा ये प्रसारण डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर सुन सकते हैं। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम तरंग। सैनिक भाइयों, हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने अभिनय से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। आज की इस तरंग कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी सादगी, सहजता और शानदार अभिनय से भारतीय सिनेमा की यादगार किरदारें निभाई। हम बात कर रहे हैं जया बच्चन की। सैनिक भाइयों, जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को हुआ था। बचपन से ही कला और अभिनय में उनकी रुचि थी। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की और बहुत कम उम्र में फिल्म जगत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उनकी अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता रही उनकी सहजता। जब वे पर्दे पर किसी किरदार को निभाती तो ऐसा लगता था जैसे वो किरदार उनके लिए लिखा ही गया हो। आइए सुनते हैं तरंग कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत अभिमान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

सैनिक भाइयों, उनके किरदारों में बनावटीपन नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की झलक दिखाई देती थी। चाहे एक चंचल युवती का किरदार हो या एक भावुक और जिम्मेदार महिला का, उन्होंने हर भूमिका को पूरे समर्पण के साथ निभाया। अगला गीत आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

सैनिक भाइयों, जया बच्चन बच्चन की मुस्कान, उनकी आंखों की अभिव्यक्ति और संवाद करने का उनका सहज अंदाज दर्शकों को हमेशा प्रभावित करता है। उन्होंने ये साबित किया कि एक कलाकार की ताकत केवल बड़े संवादों में नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों में भी छिपी होती है। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये अगला गीत मिली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

अपने अभिनय सफर के दौरान उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए और दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि आज भी लोग उनके निभाए गए किरदारों को याद करते हैं। सैनिक भाइयों, एक अच्छा कलाकार वही होता है जिसकी कला समय बीतने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे। अगला गीत आइए सुनते हैं एक नजर फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, फिल्मों के साथ साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन चाहे कोई भी जिम्मेदारी रही हो, उनकी पहचान हमेशा एक संवेदनशील और प्रभावशाली कलाकार के रूप में बनी रही। अगला गीत आइए सुनते हैं पिया का घर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, जया बच्चन का सफर हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल लोकप्रियता से नहीं मिलती। मेहनत, अनुशासन, सादगी और अपने काम के प्रति ईमानदारी ही किसी व्यक्ति को लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनाए रखती है। इसी के साथ अगला गीत आइए सुनते हैं उपहार फिल्म से मुकेश की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ चुनिंदा राजस्थानी गीतों को। पहला राजस्थानी गीत आइए सुनते हैं राजस्थान के गीत एल्बम से सुरैया बेगम की आवाज में।

सैनिक भाइयों, अगला राजस्थानी गीत आइए सुनते हैं मेहंदी रचानी एल्बम से सीमा मिश्रा की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वो सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार की मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम करना, देश के विकास में काम करना। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूँ कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था,

0: उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
2: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
4: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
4: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
5: इस साल बजट में

0: 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जरडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों से 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले।

0: अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर स्वागत है आज के प्रसारण में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत आइए सुनते हैं कोई आपसा फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाजों में काबिल फिल्म से।

प्रीतलहरी कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म से।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं। हम किसी से कम नहीं फिल्म से अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाजों में।

सनिक भाइयों, कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं हीरो नंबर 1 फिल्म से उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाजों में।

इस गीत के साथ प्रीतलहरी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का प्रसारण। कल दोपहर 12:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं अंशु झा लेती हूँ आपसे विदा। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की कला है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन स्वस्थ सक्रिय और ऊर्जावान बने रहना हमारे हाथ में है। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन कुमार। आप एक योग आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868-107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपकी फिटनेस की यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर अपने विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आप हमें ये बताइए हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है?
2: वृद्धावस्था में स्वस्थ कैसे रहा जाए, और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है, तो उम्र का बढ़ना प्रकृति का एक नियम है। बढ़ती उम्र एक खूबसूरत पड़ाव है जिसे योग के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और योग का केवल मतलब ये नहीं होता कि शरीर को कठिन आसनों से मोड़ना तोड़ना, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। योग का जहाँ तक अर्थ है, अपने शरीर के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, अपने शरीर के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सक्रिय करना। प्राय ये देखा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का, जिसे हम हेल्दी एजिंग की बात कह रहे हैं, तो हेल्दी एजिंग को पाने के लिए योग एक माध्यम है और इस माध्यम से हम एक हेल्दी एजिंग की लाइफ को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं।
1: तो योग, जैसे कि आपने कहा, हेल्दी एजिंग के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, तो ये हमारे शरीर को और मन को कैसे स्वस्थ रखेगा, कैसे रख सकते हैं हम इसके जरिए?
2: योग के माध्यम से शरीर और मन दोनों, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, और योग दोनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। क्योंकि ये कहावत काफी समय से प्रचलित रही है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यदि एक शरीर अगर हमारा रोगी होता है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है, और यदि मन रोगी होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग भागों पे पड़ता है। मन अगर रोगग्रस्त होता है, मन अगर विभिन्न प्रकार की व्याधियों

0: से ग्रस्त होता है तो उसका हमारे शरीर के आंतरिक कार्य प्रणाली पे बहुत गहरा दबाव पड़ता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है और जिसकी के कारण व्यक्ति अपने आप को शक्तिविहीन महसूस करता है। और जब हम योग से जुड़ते हैं तो योग करने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहने लगते हैं।
1: तो वृद्धावस्था की, जैसे कि हमारा आज का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो वृद्धावस्था में हम स्वस्थ रहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से योग करने चाहिए?
0: वृद्धावस्था में व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए सबसे पहले है कि हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबल हों। हाथों में उंगलियों में प्राय देखा गया है लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है, घुटनों में अर्थराइटिस हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, कंधों में फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और इसके अलावा कमर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द रहने लगता है। तो वृद्धावस्था में इन सब रोगों को दूर करने के लिए योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम योग की कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं, कुछ योग की सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो शरीर में जो एक बढ़ती उम्र के साथ चेंजेज आते हैं उन चेंजेज को बढ़ने से रोका जा सकता है और शरीर को फिर पूर्व अवस्था में, एक जो किसी समय में किसी उम्र में हमारी एक शरीर की एक स्वस्थ अवस्था बनी हुई रही थी, कभी वो स्वस्थ अवस्था फिर वापस लौटने लगती है।
1: वृद्धावस्था में स्वस्थ अवस्था रहे, इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर हमने फिट रहने का, स्वस्थ रहने का लक्ष्य बना लिया तो हम उसे जरूर पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें आप ये बताइए कि वृद्धावस्था में, जैसे कि अगर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो इनके लिए क्या अलग अलग आसन है या कोई ऐसा आसन है जो दोनों कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं?
1: कुछ आसन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख आसन है जैसे भुजंग आसन है, ये चाहे महिला है चाहे पुरुष है दोनों ही कर सकते हैं। भुजंग आसन की पद्धति इस प्रकार से है, बहुत आसान है करने का तरीका। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखते हुए सांस भरते भरते गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए कमर को मोड़ देने की स्थिति का नाम भुजंगासन है। ये महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो, सभी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पादहस्त आसन है, ये खड़े होके आसन किए जाते हैं और दोनों पैर मिला के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं और फिर दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों हाथों को बिना घुटना मोड़े दोनों हाथ पैर के अंगूठे के साथ टच करेंगे और इसमें कुछ सेकंड रुकते हैं और कुछ सेकंड के बाद फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए वापस आ जाते हैं। ये बाधस्थ आसन है, इसको महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक कटी चक्र आसन है, ये आसन भी पैरों में 2 फीट के लगभग अंतर रखते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ रखते हैं कंधे की सीध में और फिर दोनों हाथों को लेफ्ट साइड कमर को ट्विस्ट करते हैं और कुछ सेकंड ट्विस्ट करके रुकना होता है और फिर दोबारा सेंटर में वापस आ जाते हैं। ये दाएं और बाएं दोनों तरफ से यदि किया जाए तो ये आसन भी महिला और पुरुष दोनों एक साथ कर सकते हैं।
0: तो क्या यह आसन सुबह खाली पेट करना होता है या पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं?
1: खाली पेट ही आसन किए जाते हैं और सुबह अगर ये आसन खाली पेट किए जाए तो अधिक लाभ मिल सकता है और जिनके पास सुबह कोई ऑफिस वर्क है, कहीं पर उनको जल्दी जाना होता है, तो शाम के समय भी ये आसन किए जा सकते हैं। शर्त ये है कि दोपहर का खाना 4 घंटे पहले खाया हुआ हो।
0: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते। ये लिखते हैं कि मैंने MRI करवाया था, मुझे साइटिका बताया है। मुझे हिप से काफ्स तक पेन होता है, मैं कौन सा योगा एक्सरसाइज करूं? सतीश कुमार, एज है 65 वर्ष और वजन है इनका 95 किलो, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
1: सतीश कुमार जी, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप साइटिका से पीड़ित हैं, और आसान तरीका है, साइटिका पेन से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका योग ही है। इसमें विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन अनेक लोगों पे हमने प्रयोग किए हैं और उन लोगों ने साइटिका की पीड़ा से छुटकारा पाया है। और इसमें एक ही टांग में कमर रीढ़ की हड्डी से यह दर्द शुरू होता है कुल्ले तक और कुल्ले से फिर थाइस में और फिर काफ से पैर तक ये पेन की लहर जाती है। इसके लिए एक आसान आसन, जैसे मैंने बताया कि विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन कर सकते हैं, जमीन पर लेट जाएं और दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल फैला के रखें, फिर दाहिना पैर आप बाएं हाथ के साथ मिलाने की कोशिश करें। जब दाहिना पैर उठा करके बाईं तरफ लाएंगे तो घुटना सीधा रहना चाहिए और यदि आपकी उसी टांग में दर्द है तो फिर ये शायद आप अपने आप ना कर पाए, तो इसके लिए फैमिली के किसी मेंबर्स की सपोर्ट लीजिए और वो आपके पैर को ऊपर उठाते हुए राइट वाले पैर को लेफ्ट फैले हुए हाथ के पास लगा के कुछ सेकंड रोके और कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर पैर को वापस ले आना होता है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करते हैं। ये विधि अगर 3 से 5 बार सुबह शाम अगर की जाती है तो आप पाएंगे कि आपकी साइटिका पेन में काफी आपको 8-10 दिन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास पैदा होता है। और फिर आप कुछ दिन अगर इसको कर लेते हैं 15 दिन 20 दिन तो 80 से 90% साइटिका पेन से छुटकारा मिल जाता है।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
3: हेलो
0: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हिम्मत सिंह हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। साहब को भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी आरडी की प्रॉब्लम है जी, एसिडिटी ऊपर रिफ्लेक्स हो जाती है, उसके लिए कोई योगा जी?
1: एसिडिटी रिफ्लेक्स यदि आपको हो रही है तो जिन चीजों से एसिडिटी आपको खाने से बनती है इस चीज का आपको पता चल गया होगा। अगर आप बहुत ज्यादा चाय का सेवन करते हैं, कॉफी का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मात्रा को कम कीजिए। दूसरा, अपना आहार में बदलाव लाइए। 2 प्रकार के आहार हम लेते हैं, एक होता है एसिडिक फूड और दूसरा होता है एल्कलाइन। तो 70% आप एल्कलाइन फूड लीजिए और 30% आप एसिडिक फूड लीजिएगा। एसिडिक फूड में आता है मैदे का बना हुआ सामान है, बेकरी है, बिस्किट्स है और नमकीन है, इस टाइप की चीजें आती हैं। और जितना भी क्षारीय आहार है उसमें गाजर है, खीरा है, टमाटर है, ये जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको ये एसिडिटी की जो शिकायत है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। योग की जहाँ तक बात की जाए तो योग में आप कुंजल क्रिया कीजिए। सुबह खाली पेट 3 से 5 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और आगे झुकते हुए दो उंगलियां अपनी जीभ से थोड़ा सा टच करें, उससे पिया हुआ पानी सारा वोमिट बन करके बाहर आ जाएगा। जैसे पानी बाहर आएगा तो आपकी एसिडिटी भी उसमें घुलनशील होकर के बाहर निकल जाएगी। ऐसे प्रतिदिन कुछ दिन कर लीजिए तो डेफिनेटली आपको इससे काफी लाभ मिल जाएगा।
0: एक और श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
4: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
0: अजी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
4: जैसे मैडम ने बताया कि योग से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि सारी बीमारियां हैं इससे दूर हो सकती हैं, तो मैडम मेरा ऐसा है ना डॉक्टर साहब?
1: जी जी बोलिए।
4: मेरा थोड़ा बीपी ज्यादा है तो मैं एमिडोपिन, कोई अंग्रेजी दवाई है तो उससे मैं समझता हूँ कि साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, तो मुझे कौन सा योग करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि जो स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि योग के साथ साथ दवाई भी खाना चाहिए, कैंसर की बीमारी दूर होती है, तो इस तरह से गलत धारणा भी लोगों के दिमाग में है, तो मुझे यही बताना है कि आप मुझे कौन सा योग करना है? बीपी ज्यादा है।
1: देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होना एक लाइफस्टाइल डिजीज के अंतर्गत आता है, तो यदि आपका जीवन की पद्धति कुछ आपको लगता है कि अगर कुछ गलत चल रही है तो उसको थोड़ा सा बदलाव लाइएगा। और अगर आप अपने आहार में बहुत ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप तीखे मिर्च मसाले वाले वेजिटेबल्स लेते हैं या बाजार का कुछ इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा मिनिमाइज कीजिएगा। और जहाँ तक योग की बात आप कह

0: रहे हैं कि इसमें देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको चंद्रभेदन प्राणायाम की मदद ले सकते हैं। इसमें राइट नोस्टिल बंद करते हुए लेफ्ट नोस्टिल से सांस को भीतर लीजिए और राइट नोस्टिल से सांस को बाहर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा संयम से कीजिए, जल्दी में और बहुत तेजी में आके मत करें। धीरे धीरे आप लेफ्ट नोस्टिल यानी चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए और राइट नोस्टी से धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। ये कम से कम 5 मिनट तक आप कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं और आप अपने दोनों टीथ को आपस में मिलाइए और टीथ के माध्यम से वायु को मुख के द्वारा भीतर की ओर धीरे धीरे भरिए। पूरा भरने के बाद होठों को बंद कर लेते हैं, फिर दोनों नोस्टी से सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये दो प्राणायाम कीजिए, साथ में रिलैक्सेशन करिएगा। जब भी आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप थोड़ा रिलैक्सेशन करें, नीचे लेट जाएं या अपने बेड पे भी लेट सकते हैं। और बेड पे लेटते हुए शरीर को जितना रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को ढीला छोड़ते जाओ, ढीला छोड़ते जाओ। और ढीला छोड़ने का क्रम जो है 5 से 10 मिनट तक लगता है, एकदम शरीर ढीला नहीं हो जाता। जैसे जैसे बॉडी आपकी रिलैक्स होती चली जाएगी, आपका जो शूटअप हुआ ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और जब भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप राइट करवट लेके लेटे। राइट करवट लेके लेटने से आपकी चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास चलना शुरू हो जाती है। ऐसा करने से साइंटिफिकली क्या प्रभाव पड़ेगा कि चंद्र नाड़ी से सांस चलने से ब्लड प्रेशर कैसे कम हो सकता है? इसका सीधा प्रभाव जो है वो हमारी पैरासंपैथेटिक नाड़ियों पे पड़ता है। जब पैरासंपैथेटिक नाड़ियां हमारी एक्टिव हो जाती हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, तनाव कम हो जाता है। और हम देखा है हमने कि 10 से 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो आप इनका प्रयोग करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि इनसे पहले भी एक श्रोता थे हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने भी कहा था कि डाइजेशन का इशू है, तो वृद्धावस्था में अक्सर देखा जाता है कि कुछ खाते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाचन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, तो क्या कुछ ऐसे योग आसन है कि जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए, जो हम डेली में कर ले, इजली खा सके, इजली डाइजेस्ट हो सके?
0: जो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये देखा गया है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का जो चलना फिरना है वो काफी कम हो जाता है। 60 ईयर्स की एज के बाद प्राय लोगों को देखा गया है, वो बैठे रहते हैं या वो अपने बेड पे लेटे रहते हैं, उन्हें आराम करना ज्यादा आरामदायक और अच्छा लगने लगता है। बॉडी का डीएक्टिवेट होना ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया जो है मंद पड़ने शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा बॉडी को वर्किंग में रखें, थोड़ा सा वॉक कीजिएगा और खाना जो है वो थोड़ा सा हल्का लीजिएगा, क्योंकि आप अब आपकी कैलोरी बर्न तो हो नहीं रही है। तो अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे आप 10-15 साल पहले कर रहे थे, भोजन की क्वांटिटी यदि उतनी ही ले रहे हैं और वर्किंग में बॉडी है नहीं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके कारण आपको एक मंदाग्नि रोग के शिकार इस उम्र में लोग हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें केवल इतना ही करना है कि जठरा अग्नि को थोड़ा सा दीपन किया जाए। जठरा अग्नि को बढ़ाने के लिए योग में अग्नि सार क्रिया की बात बताई गई है। वज्रासन में इसमें बैठ जाती है।

0: यानी दोनों घुटने मोड़ करके एड़िया हिप्स के नीचे रख के वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखते हैं, सांस पूरा भरे और फिर सांस को पूरा धीरे धीरे बाहर छोड़ के सांस को बाहर रोक देते हैं। तब पेट की धीरे धीरे पंपिंग करते हैं, पेट अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, ऐसा सांस के बाहर रोके रहने तक 10-12 बार ही हो पाता है। फिर एक नई सांस ले ले, पेट को हिलाना बंद कर दे। इस तरह से इस पद्धति को 4-5 बार किया जाए तो आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है, इस समस्या का जो संबंध है वो आपकी नींद से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी पाचन क्रिया हमेशा खराब रहेगी। तो रात की नींद गहरी होनी चाहिए, तब आपका पाचन क्रिया भी अच्छा होगा।
1: अक्सर हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था में कि हमने अपनी उम्र में बहुत काम कर लिया, अब हम आराम करेंगे, लेकिन काम से आराम करना शरीर को आराम नहीं देना।
0: जी।
1: ये बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं योग फॉर हेल्दी एजिंग पर, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 75-80 केजी के आसपास मेरा वजन है। ओ पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप
1: जी।
2: पित्त मेरी प्रवृत्ति है। तो डॉक्टर साहब, मेरे कई सारे सवाल हैं, प्लीज आप नोट करें, मैडम भी नोट करें। वैसे तो खैर 21st को आप जगह डे मना ही रहे हैं हम सब, तो मेरी आप लोगों से तमन्ना है कि एक दिन जो है ना आकाशवाणी से पूरे प्रोग्राम योगा भाई सारे प्रोग्राम कैंसिल करके योगा प्रोग्राम पेश करें। जैसे 1 घंटा फॉरन कार्यक्रम, 1 घंटा अपने हिसाब से पेश डॉक्टर अपनी राय दे, 1 घंटा फॉरन कार्यक्रम, 1 घंटा अपनी राय दे, ऐसे कुछ हो तो अच्छा रहेगा।
3: आप अपना सवाल कीजिए।
2: मैं अपने सवालों पे आता हूँ डॉक्टर साहब। मेरे को क्या है कि कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम है, हिप्स जॉइंट्स में और नेक में प्रॉब्लम है। अब मैं आगे की ओर बेंट होता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम बढ़ रही है, पीछे की ओर बेंट होता हूँ तो मुझे उसका रिलीफ मिलता है। हिप्स में ना क्या है, स्टिफनेस तो नहीं है, सॉरी स्वेलिंग नहीं है, स्टिफनेस और पेन होता है। धनुष होता है ना, धनुष का बिना शरीर हो गया है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस सर्दी दोनों में बढ़ जाती है। क्या मैं विदाउट सपोर्ट बैठो या आगे की ओर बैंड हो, इंडियन टॉयलेट में ऐसे बैठता उस मुद्रा में बैठो अवस्था में मुझे परेशानी हो रही है,
3: इसे मुझे क्या करना चाहिए? अपनी कमर और अपनी गर्दन में पीड़ा की बात कही है और आपने स्वयं ही बता दिया कि आगे झुकने से कमर में दर्द और गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। जब तक आप थोड़ा योग करके स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपको फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। और योग की जहाँ तक बात आती है कि अगर कमर में दर्द है तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। हमारी बैकबोन के अंदर एक डीजनरेटिव प्रोसेस होता है और दूसरा होता है कि हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन आ जाती है तो भी हमारी कमर में दर्द होता है। यही स्थिति गर्दन के साथ होती है। जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी में डीजनरेटिव प्रोसेस होगा तो हमारे वर्टिब्रेस के अंदर कुछ रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से टच करती है तो उसकी वजह से नाड़ियों में एक झुनझुनी एक दर्द की लहर पैदा होती है। तो आपको इसके लिए आसान सा दो आसन हम बता रहे हैं। एक आसन पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूँ, भुजंग आसन करेंगे, पेट के बल लेटना है और पेट के बल लेट करके दोनों हाथ अपनी कंधों के नीचे रखते हुए हाथों के सपोर्ट से अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाएं और साथ साथ जितनी आसानी से कमर मुड़ जाए उतनी मोड़ें, क्योंकि ज़्यादा मोड़ेंगे तो एकदम बहुत तेज दर्द कमर में आने की संभावना होती है। धीरे धीरे मोड़े और फिर थोड़ा रुके 2-3 सेकंड, उसके बाद फिर माथे को नीचे

0: ले आएंगे तो आपकी कमर में और गर्दन में उसी समय नीचे लाने पे तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे करने से हमें आराम मिल रहा है। दूसरा हम कर सकते हैं मकर आसन। इसमें पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और दोनों घुटने मोड़ लेने चाहिए और दोनों हाथों को मकर आसन करने के लिए कंधों की सीध में फैला दिया जाता है और दोनों मुड़े हुए घुटनों को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ें और अपनी गर्दन को राइट साइड मोड़ें। यहाँ पे 2 सेकंड 4 सेकंड जितना आप रुक सकते हैं आराम से रुकें, उसके बाद 2-4 सेकंड बाद फिर दोनों घुटनों को और गर्दन को बीच में ले आए। इसी तरह से दोनों घुटनों को राइट साइड मोड़ेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। इस तरह से ये विधि मकर आसन की दोनों तरफ से 4-4 बार कीजिएगा और जिस दिन आप करेंगे उसी दिन पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद बेटर फील करना शुरू कर दोगे।
1: जी एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरी वाइफ को हर्पीस की बीमारी है, आई से नीचे की तरफ नोज पर पेन होता है, मेरी वाइफ कौन सा योग करें कि फायदा हो? राजरानी, एज है इनकी 67 ईयर्स और रोहिणी दिल्ली से।
0: देखिए हर्पीस एक प्रकार के जीवाणु के कारण होती है और इसमें बड़ा इरिटेशन होती है जो भी इस रोग के शिकार होते हैं, तो काफ़ी इरिटेशन फील होती है, तो कुछ ठंडक चाहिए। तो ठंडक चाहिए तो इसके लिए किया जा सकता है शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। अपनी जीभ को थोड़ा सा पाइप नुमा बना के फोल्ड करें और जीभ के माध्यम से शीतल शीतल वायु को भीतर की ओर भरें और फिर होठ बंद करके अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें और थोड़ी रोकने के बाद दोनों नोस्ट्रिल से वायु को छोड़ दें। ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन करें तो जो इरिटेशन आपके फेस के आसपास आईज के नीचे हो रही है हर्पीस के कारण उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ जो भी आपको ट्रीटमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं वो इसको कंटिन्यू में रखें। अभी
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, इन टूडे स्ट्रेसफुल वर्ल्ड आई एम मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब्ड, विच योग आसन आई कैन डू टू बी फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव। वैसे तो इनकी उम्र 26 साल की और हम वृद्धावस्था पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने मैसेज भेजा है तो हम ले लेंगे आज के शो में। तो ये लिखते हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो कौन सा योगासन करूँ?
0: फिजिकली और मेंटली अनफिट होना इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपके अंदर जो एक बायो एनर्जी है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बायो एनर्जी हमें माइंड और बॉडी दोनों से कनेक्ट करती है। जब भी हमारी बायो एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों में अनफिट फील करेंगे। और आपको क्या करना है, आप कुछ दिन, केवल कुछ दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा, राइट नोस्टिल बंद करें और लेफ्ट नोस्टी से सांस अंदर भरना है और फिर राइट नोस्टी से छोड़ देना है, फिर लेफ्ट नोस्टी बंद करें, राइट नोस्टी से भरें और लेफ्ट नोस्टी से छोड़ देना है। ये अल्टरनेट प्रोसेस के साथ ब्रीदिंग आप करिए और कम से कम 10 मिनट जरूर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि पहले दिन ही जिस दिन आप 10 मिनट करेंगे आप अपने अंदर बड़ा ग्रेटेस्ट चेंज फील कर पाएंगे। तो आप इसे करिएगा और फिर इसके रिजल्ट देखिएगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर मैडम को भी नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: जी बोलिए रघुवीर जी।
2: मैडम मैडम मेरे को 2-3 सवाल पूछने थे। जैसे ये मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, मैं मेरी उम्र है 58-59 साल करीबन, तो आर्मी में क्या होता है कि कोई भी पीटी लंबी रनिंग के बाद या कुछ वार्म अप के बाद ही होती है, तो उसमें बताते हैं कि लंबी सांस नाक से लो और मुंह से छोड़ो करके। तो अब सिविल में तो ये बोलते हैं कि नाक से लो नाक से ही छोड़ो, एक क्वेश्चन ये था। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा श्रोता बंधु जो रघुवीर जी के लिए आपने बोला था कि जो हम जीभ को मोड़ते हैं तो उससे सांस लेते हैं, तो फिर मुंह बंद करके छोड़ना है या फिर जीभ से छोड़ना है, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करता हूं जब मैं कोई भी काम मुंह करता हूं तो मैं लगा रहता हूं ऐसे। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो योगा से फायदा होता है या फिजिकल से फायदा होता है, क्योंकि फिजिकल रनिंग भी हम लोग करते हैं, जैसे हमारे तो घर रोड साइड में तो दौड़ जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता, तो योगा से में फायदा होता है ज्यादा कि या फिजिकल उसमें फायदा होता है, थोड़ा बताने की कोशिश करें मैडम।
0: देखिए योग जो है वो शरीर मन और आत्मा इन तीनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। फिजिकली जितना भी आप रनिंग करते हैं उससे शरीर का जो बाहरी हिस्सा है जैसे मांसपेशियां हैं और आपका थोड़ा स्टेमिना अच्छा हो जाता है, इतना ही होता है। लेकिन यदि आप शारीरिक और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करना चाहते हैं तो इन सब का जो लाभ है वो केवल योग से ही मिलता है। योग हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाती ये सब चीजें, आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो योग आपको तनाव से मुक्त करने का एक तरीका बताता है और आप की सोच एकदम पॉजिटिव हो जाती है और आप सारा दिन रिलैक्स महसूस करने लगते हो।
1: रिलैक्स रहने के लिए तो हम योग करते हैं और योग करना भी जरूरी है। एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, योग क्या दिन में किसी समय भी कर सकते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में अगर ना कर सकते हो क्या सिटिंग पोजीशन में कुछ क्रियाएं कर सकते हैं? सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से।
0: सरोज जी, योग का समय सुबह और शाम का ही ठीक समय माना गया है, लेकिन यदि आप ऑफिस वर्किंग हैं और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो आप अपनी चेयर पे बैठे हुए भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं, पैरों को जमीन पे टिका करके और आप अपनी कमर को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड ट्विस्ट करें, तो इसे चेयर योगा कहते हैं। तो चेयर पे बैठे बैठे आप अपनी गर्दन काफ़ी आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और गर्दन अकड़ गई है 6-7 घंटे काम करते, तो चेयर पे बैठे बैठे गर्दन को बैक स्ट्रेच कीजिए और गर्दन को साइड मूवमेंट दीजिए। इस तरह से 4-5 times बैक स्ट्रेच करें, फ्रंट में लाएं और फिर इसी तरह गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़े, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड मोड़ें, ऐसे 4-4 times इसे करें, तो आप ऑफिस में बैठ के भी योग कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअली समय निर्धारित है वो सुबह और शाम का है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो फिर आप अपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं।
1: शायद कई बार काम करते करते हम स्ट्रेचिंग करना भी भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब दर्द का एहसास होता है तब हमें लगता है कि हाँ कुछ अकड़ गया है, जकड़ गया है।
0: तो जब अकड़ जाता है तो उसको करने के बाद तुरंत रिलीफ भी मिलता है।
1: मिलता है। एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, नमस्कार, मन को एकाग्र करने का उपाय समझाइए, क्या उसके लिए कोई योग है? अनिल गुरुग्राम से।
0: अनिल जी, कि मन को एकाग्र करने की ही बात हमारे महर्षि पतंजलि जी ने की है। महर्षि पतंजलि हमारे योग के गुरु कहलाते हैं और उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग करने से एकाग्रता आती है। आप योग करने के लिए एक ड्राइंग पेपर के ऊपर एक 1 rupees coins का एक गोल चक्र बना लें और उसको किसी ब्लैक पेन से ऐसे फिल कर लीजिए, बिल्कुल काले रंग का एक गोल

0: चक्र बन जाएगा। उसे आप दीवार के ऊपर कहीं पेस्ट कर लीजिए और पेस्ट करने के बाद अपनी नासिका से 4 फीट की दूरी पर बैठ करके उस गोल बिंदु को देखें और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट देखने के बाद आपके चित्त में एक ठहराव आने लगता है और आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है। इसे योग की भाषा में त्राटक विधि कहते हैं और जैसे जैसे आप त्राटक विधि का प्रयोग करने लगेंगे आपके मन में एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके मन में अननेसेसरी जो थॉट्स आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे।
1: तो क्या ऐसे में याददाश्त बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि वृद्धावस्था में जाते हैं तो कई बार हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो क्या कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे योगासन है जो बढ़ती उम्र के साथ कर लेने चाहिए?
0: बिल्कुल, प्राय ये देखा गया है कि एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी आने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं और कभी कभी किसी किसी का नाम भी व्यक्ति भूल जाता है। तो स्मृति के ऊपर योग का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो दिमाग की जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। तो डीप ब्रीदिंग करनी होती है, इसमें एक स्मृति शक्ति विकासक योग की बात कही गई है। ये विधि खड़े होकर की जाती है, दोनों पाँव को मिला करके गर्दन सामने की तरफ रखते हैं और सिर के मिडिल हेड के ऊपर फोकस करते हुए फोर्सफुली आपको इनहेल एक्सहेल 15 से 20 बार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन के अंदर एक फ्रेशनेस आती है और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो धूमिल हुई स्मृति है फिर से जागृत हो जाती है और फिर हम स्मृति में काफी सुधार महसूस करते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: नमस्ते मैडम, मेरा नाम ब्रह्मदत्त है, मंगोलपुरी दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ।
1: अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: पहले तो विशेषज्ञ जो आए हैं उनको सादर प्रणाम।
0: सादर प्रणाम ब्रह्मदत्त जी।
2: जी, मैं हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी हाईफाई मशीनें हैं आजकल अत्यधिक तकनीक से युक्त, हम लोग जिम जाते हैं जिम करने, तो क्या जिम और योगा संयुक्त रूप से कर सकते हैं? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं?
0: नहीं, संयुक्त रूप से कर सकते हैं, दोनों चीजें संयुक्त रूप से कर सकते हैं। पहले जिम कर लीजिए और जिम पूरा जब हो जाए तो उसके बीच में 10 मिनट का थोड़ा गैपिंग रखिएगा, उसके बाद आप योग कर लीजिएगा, क्योंकि जिम जो है वो आपकी मसल्स पावर को बढ़ाता है और योग जो है वो आपके ओवरऑल जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा और हमारा एस्क्रिटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारा पूरा जो नाड़ी तंत्र है उन पे गहरा प्रभाव योग के माध्यम से आता है और इनमें एनर्जी आती है योग करने से। दूसरा, एक तरफ आप जिम करते हैं तो मसल्स हार्ड हो जाते हैं, टाइट करता है जिम, और योग उन मसल्स में एक नई स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। दोनों में बस थोड़ा सा ये अंतर है कि आपने जो जिम के माध्यम से मसल्स डेवलप किया है वो योग के माध्यम से उस मसल्स को लंबे समय तक बनाए रखने में आपकी योग से काफी सहायता मिल जाती है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हम सब अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, तो क्या चाय के बाद हम योग कर सकते हैं और हम अपनी मील्स में क्या क्या खाना चाहिए, प्लीज बताएं। पूनम फ्रॉम नांगलोई।
0: पूनम जी, आप दिन की शुरुआत चाय से मत कीजिएगा, आप दिन की शुरुआत हरे नारियल के पानी से करें।

0: सुबह उठते ही एक हरे नारियल का पानी आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास हरा नारियल उपलब्ध नहीं है तब आप नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि नींबू पानी भी आप नहीं पीना चाहते तो सुबह फलों का एक गिलास जूस पी लिया कीजिएगा। दिन की शुरुआत आप ऐसे करें। आगे आप क्या पूछ रहे हैं?
1: वो कह रहे हैं कि वो चाय के बाद हम योग कर सकते हैं।
0: चाय के आधे घंटे के बाद आप योग कर सकते हैं। चाहे जैसे ही आपने शाम को 4 बजे चाय पी है तो 5 बजे आप योग कर सकते हैं।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, वेरी नाइस डिस्कशन, वेरी नाइसली कंडक्टेड बाय शिल्पा गुप्ता मैडम एंड आल्सो डॉक्टर योगा टीचर। माय प्रॉब्लम इज माय स्लीप गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू यूरिन। माय एज इज 60 इयर्स। Prostate operation done maybe due to BP tablet. Guide for continuous peaceful sleep. I am getting up early. Sanjay Joshi from Pune.
0: संजय जोशी जी, आप प्रोस्टेट की इस प्रॉब्लम के कारण जो इनकंटिनेंस यूरिन की समस्या है उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिएगा। इसके लिए मैं एक आसान सी विधि आपको बता रहा हूँ। इसमें योग में आती है एक प्रक्रिया मूल बंध की। आप अपने गुदा के मांसपेशियों को अंदर स्क्वीज करें, गुदा की मांसपेशियों को स्क्वीज करते हुए कुछ देर रोके। ऐसे रोकने के कारण आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सुधरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम में सुधार होगा आपका जो फ्रीक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है और उसमें सुधार हो जाएगा। नाइट में बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ओवरऑल इसका जो पूरे हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। जैसे मैंने बताया, एक नेचुरल वे है कि आप मूलबंध लगाएं, गुदा को भीज के रखने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं, इसे रोकिए और फिर उसके बाद इसे ढीला कर दीजिए। कितनी बार करना चाहिए? कम से कम कंटिन्यूसली 5 मिनट तो जरूर कीजिए। एक आता है मल आसन। जैसे इंडियन हमारी टॉयलेट होती थी तो दोनों पैरों के बाहर हम बैठते थे, उस स्थिति का नाम है मल आसन। उसमें बैठ जाइए 2-3 मिनट और फिर बस उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से करिए। रात्रि के समय जो लिक्विड डाइट्स है वो कम लीजिए। दूध या अन्य पदार्थ रात के सोने से पहले लेना बंद कर दिया कीजिएगा और उससे आपकी रात को यूरिनेशन नहीं होगा और कम हो जाएगा, जिससे नींद आपकी क्वालिटी सुधरेगी। और नींद के लिए थोड़ा सा शवासन रात को जरूर कर लिया करें।
1: योग जरूरी है, चाहे हम सुबह उठ के करें और रात की अगर नींद की समस्या है तो रात को जरूर करें। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड रविंद्र पाठक जी का आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के कितने टाइम बाद योग शुरू किया जा सकता है? बहुत सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
0: आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो आप 20-25 दिन बाद हल्के हल्के योग करना शुरू कर दीजिएगा। 20-25 दिन बाद सर्जरी अगर आपकी हुई है तो 20-25 दिन बाद योग करना शुरू कर दीजिएगा और धीरे धीरे एक हफ्ते तक जो आपका पुराना रूटीन योग कर रहा है एक हफ्ते तक उसी रूटीन में आके कर सकते हैं। और कोई सवाल इन्होंने पूछा
1: नहीं, उन्होंने यही पूछा था कि कितने दिन बाद योग शुरू कर सकते हैं।
0: हाँ, कर सकते हैं, 20-25 दिन बाद शुरू कर सकते हैं।
1: और एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर योगाचार्य को सादर नमन। डॉक्टर साहब, योग बंद कमरे में या खुले पार्क में करना चाहिए? योग में खान पान का क्या महत्व है? बच्चे, जवान और बुजुर्गों को कैसी डाइट रखनी चाहिए? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: योग हमेशा

0: खुले स्थान पे ही करना चाहिए। बंद कमरों में योग करने से उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी पाई जाती है। जब हम खुले वातावरण में योग करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर उसका प्रवाह अच्छा हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह अच्छा हो जाने से हमारा जो सोच है वो सकारात्मक होने लगती है। और जहाँ तक आपने आहार की बात की है कि कैसा आहार होना चाहिए, अगर हमारा शरीर 10 से 22-25 साल की एज का है तो हमें अपने शरीर के ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, जिसमें सभी तरह के तत्व शामिल हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। और अब अगर बात आ जाती है कि उम्र बढ़ गई है तो उम्र बढ़ करके हमें अपने भोजन पे थोड़ा सा संयम बरतना है। योग में ये भी बताया गया है कि शरीर को 4 भागों में बांट दिया जाए, 2 भाग भोजन के और 1 भाग जल के लिए और 1 भाग खाली रखना चाहिए सांस लेने और छोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप भोजन का विभाजन अपने लिए कर सकते हैं।
1: वैसे हमारा जाने का समय हो गया, लेकिन जाते जाते शॉर्ट में एक मैसेज आया है, वो मैं लेना चाहूंगी। वो लिखती हैं, उनकी एज 46 इयर्स है, रेनू भोपाल से। प्लीज सजेस्ट योगा फॉर प्री मेनोपॉज वुमेन के लिए।
0: प्री मेनोपॉज के अंतर्गत जब प्री मेनोपॉज के लक्षण आते हैं तब प्राय देखा जाता है कि महिलाओं में एक डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो प्री मेनोपॉज की स्थिति में योग की कुछ विधियां, जैसे कोन आसन है, पादस्थ आसन है, ताड़ासन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इतना कर लीजिए, इससे काफी फायदा होगा।
1: और जाते जाते एक लास्ट में हमारे जो श्रोता, उनके लिए मैसेज कि कोई आसन जो हर कोई कर सकता है वृद्धावस्था में अपने, जिससे कि वो स्वस्थ रहे।
0: ताड़ासन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। ताड़ासन वृद्ध भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकती हैं। कम से कम 8-10 बार ताड़ासन करें, पादस्थ आसन करें और कटिचक्र आसन करें, कोन आसन करें। यही सारे आसन हानि रहित हैं, सभी कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की चर्चा से हमने जाना कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को अधिक संतुलित, ऊर्जावान और आनंदमय बनाने का मार्ग है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे योग विशेषज्ञ योगी गुलशन कुमार। आप हमारे कार्यक्रम में आए और योग के महत्व को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए और हर उम्र को उत्साह के साथ जिए। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहे, सजग रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: कर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की राष्ट्र की निरंतर सेवा की ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को भी मंजूरी दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शन को PNG कनेक्शन में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की ओर दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद ये बड़ी झड़प है। अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमरीका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमले किए गए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आज घोषणा की कि वह भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगी। समझौते के अंतर्गत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएंगी। ये डेटा सेंटर भारत के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक में उत्पादों और AI क्षमता को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।
1: पर जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं ढड़ी की, आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह कह लगाता रहा हूं, तो आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकहों की आवाज सुनी है। कभी कई बाखर के उन कहकहों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे।
2: ये कह कहे आंसू जज्बात, ये बेकार और नकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें?
1: हां डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। न कभी मुझे गोद में उठाया, न कभी सीने से लगाया। डैडी, मैं एक बार आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। एक बार अपनी इस दौलत की दुनिया से बाहर निकल के तो देखिए। इस दौलत की दुनिया ने मुझे शराब में डुबोकर एक बेकार चलती फिरती लाश बना दिया डरी में।
0: दोस्तों, फिल्म शराबी के इस डायलॉग को सुनकर आपको याद आ गई होगी ये फिल्म, जिसमें प्राण साहब एक पिता की भूमिका निभाते हैं, जो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास अपने बेटे अमिताभ बच्चन के लिए भी टाइम नहीं रहता। और इसीलिए इस डायलॉग में एक बेटा अपने पिता से कहता है इस तरह की बातें। दोस्तों, अधिकतर परिवार में माता पिता की व्यस्तता ही बच्चों के खराब भविष्य का कारण बन रही है, और माता पिता ये भूल रहे हैं कि बच्चे के लालन पालन में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की होती है तो वो है बच्चों के माता पिता की। जी हाँ, माँ जहाँ बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा देती है, तो वहीं एक पिता बाहरी दुनिया का दिलाते हैं बच्चों को भरोसा। और दोस्तों, जब दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश करते हैं तो बच्चा न सिर्फ अपने आप को समझता है सुरक्षित, बल्कि उसको इस बात का भी एहसास हो जाता है कि वो भी है एक सक्षम बच्चा। दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ इसी विषय पर आपसे मुखातिब होंगी और साझा करेंगी अपने विचार कि माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

सुनिए श्रोता, आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के लालन पालन में शामिल हो सकते हैं। हमारे समाज में जब विवाह होता है तो सारा परिवार बहुत उत्तेजित होता है कि मेहमान कब आएगा, कब एक छोटा बच्चा हमारे परिवार में आएगा, कब खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन जब वो खुशखबरी आ जाती है, जब बच्चा आ जाता है, तब उसके लालन पालन में काफ़ी कमियां हो जाती हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। और आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं कि तरह तरह की सलाह माता पिता को दी जा रही है कि किस तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन किया जाए, क्योंकि तेज़ रफ्तार वाले शहरों में जहां पर माता पिता दोनों काम करते हैं, बच्चों को समय नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे श्रोता जन हमको लिखकर बताते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं कि उनके बच्चे या तो घर से चले गए हैं, या उनके बच्चे ड्रग में चले गए हैं, या उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारे वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल एडिक्शन उनका हो गया है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि जो बच्चे का लालन पालन होता है वो बहुत ज़रूरी है कि माता पिता स्वयं उसमें शामिल हों। किसी सेवादार को दे देना, किसी हेल्पर को दे देना, या किसी बुज़ुर्ग माता पिता पर पूरी जिम्मेवारी छोड़ देना, ये सही नहीं है। परमेश्वर ने हमें बच्चा दिया है, उसके लालन पालन की जिम्मेवारी हमारी है। और आजकल की ज़िंदगी में जब तलाक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बच्चे का जो दिल की हालत है, क्योंकि बच्चे को तो माँ बाप दोनों चाहिए। मैं हाल ही में किसी टीचर्स के साथ बात कर रही थी तो वो बता रही थी कि मैडम आजकल बहुत ही कम है जो कि एक नॉर्मल बच्चा हमारे स्कूल में आता है। जब बच्चा नर्सरी में आता है तो अधिकतर उसके माता पिता तलाकशुदा होते हैं, तो उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत क्रोध होता है। उस छोटे से नन्हे से बच्चे के दिल में क्रोध और घृणा भरी होती है। वो टीचर पर अपना गुस्सा उतारता है, वो अपने बच्चों अपने साथियों पर गुस्सा उतारता है या उतारती है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो घर में लड़ाई का एक वातावरण देखता है या देखती है, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अपने आप को व्यक्त नहीं करते, वो ज़्यादा बोल नहीं पाते, तो उनके दिल के अंदर जो चोट लगती है, उनके जो छोटे नाजुक दिमागों में दिल में चोट लगती है, वो चोट बहुत गहरा जख्म बन जाती है। तो किस तरीके से हम अच्छे माँ बाप बन सकते हैं? अच्छे माँ बाप बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा विवाहित जीवन अच्छा हो। अगर हम विवाहित हैं और हम खुश हैं, सुखी हैं, संतोष है हमारे पास, ज़रूरी है कि ऐसे वातावरण में ही बच्चे को लाया जाए। नहीं तो बच्चे को जन्म तो दे दिया लेकिन फिर या उसको सेवादार पर छोड़ दिया या खुद अलग हो गए, तो ये सही नहीं है। किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद करने का अधिकार माता पिता को नहीं है। जब ईश्वर हमें माता पिता बनने का अधिकार देता है तो ढेर सारी जिम्मेवारियां हमारी होती हैं, और वो जिम्मेवारियां तभी ख़त्म होती हैं जब हमारे जीवन का अंत होता है। तो इसलिए जब हम माता पिता बनते हैं तो सोच समझ के अपनी जिम्मेवारियों को होशो हवास में समझ कर ही ये कदम उठाना चाहिए। नहीं तो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद करने का अधिकार किसी भी माता पिता को नहीं है। हाल ही में एक जवान लड़के की मृत्यु हो गई। सबको पता था कि उसके घर में उसके पिता रोज शाम को दारू पीते हैं, उसकी माता भी उसके साथ दारू पीती थी। तो ऐसे वातावरण में जब हम बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं बिना किसी अनुशासन के, तो हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं बच्चे से? हम बच्चे को निर्देश तो देते हैं, बच्चे को दिशा तो दिखाते हैं, लेकिन बच्चा तो हमारे लवों को नहीं सुन रहा, हम क्या कह रहे हैं वो नहीं सुन रहा, वो करेगा जो वो देखता है या देखती है। जी हाँ, हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं,
अगर हम तहजीब से बात करते हैं, अगर हम प्रेम पूर्वक अपने परिवार में रहते हैं, अगर हम अपने मन मुटाव प्यार और शांति से सुलझाते हैं, एक शांति का वातावरण अपने परिवार में रखते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम जैसे भी बात करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, वो बच्चा हमें बहुत गौर से देख रहा है और वो वही करेगा या करेगी जो उसके माता पिता करते हैं। अगर माता पिता अच्छे हैं, माता पिता अनुशासन रखते हैं, माता पिता शांति प्रिय हैं,

0: में विश्वास रखते हैं, अगर माता पिता घर में प्रार्थना का वातावरण रखते हैं, तो ठीक वैसे ही बच्चा भी करेगा, बच्चे भी करेगी, क्योंकि वो हमें देखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम माता पिता की भूमिका में अपने आप को देखते हैं या हैं, तो हमको इस जिम्मेवारी का पूरा एहसास होना है। और किस तरीके से हम अपने जो पेरेंटिंग है, माता पिता की जो भूमिका है, उसको हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। जो हमसे बुजुर्ग हैं उनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं उनकी अच्छाइयों से हम सीख सकते हैं, जो पहले पीढ़ी गई हैं उनसे हम सीख सकते हैं, हमारे माता पिता ने क्या गलतियां करी या क्या अच्छाइयां करी उनसे हम सीख सकते हैं, किताबों से, सलाह लेकर, काउंसलर्स से, क्योंकि हर एक बच्चा फर्क होता है। तो किस तरीके से हम बच्चों का लालन पालन करते हैं, प्रिय श्रोताओं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे भविष्य का, चाहे वो देश का भविष्य हो, समाज का भविष्य हो, माता पिता के हाथों में दिया है। हम सोचते हैं कि टीचर्स सुधारेंगे, लेकिन अध्यापकों के पास तो बच्चा केवल 6 घंटे होता है, बाकी 18 घंटे तो वो माता पिता के साथ घर में होता है। अब माता पिता घर में प्रेशर कुकर का वातावरण रखते हैं या प्रेम शांति का वातावरण रखते हैं, ये माता पिता के हाथ में है। कई बार तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि माता पिता बात ही नहीं करते बच्चों से, ना एक दूसरे से बात करते हैं, ना बच्चों से बात करते हैं, और करते भी हैं तो लड़ाई मार झगड़े का। तो प्रिय श्रोता, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझें, क्योंकि देश का भविष्य जो इस छोटे छोटे बच्चों की मुट्ठी में है, उसको सही दिशा दिखाना हम माता पिता का पहला कर्तव्य है।
1: जी हाँ, घर का माहौल और माता पिता का आपसी संबंध ही बच्चे का भविष्य तय करने में निभाते हैं अहम भूमिका। इसीलिए घर का माहौल खुशियों भरा और आपसी संबंधों में बनाए रखिए अपनापन और मोहब्बत, ताकि आपके बच्चे का भविष्य भी खूबसूरत और प्यार से महकता रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से अपने बच्चे से संबंधित विषय पर बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और हाँ, अगर आप हमारे साथ यानी दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं इसी नंबर पर, यानी 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा।

0: प्रोग्राम में जो है हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की धड़कन नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। जब हम आपको लिए चलते हैं यूनिवर्सिटी के गलियारों में, हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार एक नया कॉलेज और हर बार हमारे सहयोगी ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं आपके लिए हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का वो टैलेंट जो उनकी आगे आने वाली जिंदगी जो है ना उसकी एक झलक पेश करता है। अकेडमिक्स के साथ साथ टैलेंट है, सोसाइटीज हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी हैं। आई मीन इट्स स्टूडेंट लाइफ जो है ना इतनी वाइब्रेंट होती है कि उसको शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने उसे पूरे एक प्रोग्राम में समेटा है जिसे हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आप सभी के लिए। आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची कमला नेहरू कॉलेज और वहां उन्होंने की वहां के स्टूडेंट से बातचीत और बहुत सारी बातें वो जो है समेट कर लाई है, आइए सुनते हैं।
1: मेरा नाम है ऋचा और आज मैं अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आई हूँ कमला नेहरू कॉलेज और इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मेरे साथ है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो के कार्यक्रम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग।
2: थैंक यू ऋचा, आपने कमला नेहरू कॉलेज में आकर हमसे बात करने के लिए समय दिया और हमें कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ा, इसके लिए कमला नेहरू कॉलेज परिवार आपको थैंक्स करता है। मेरा नाम प्रोफेसर पवित्रा भारद्वाज है।
1: मैम अभी कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एग्जाम सीजन चल रहा है, तो मैम इस कॉलेज में एग्जाम्स जो है वो फेयर हों, ट्रांसपेरेंट हों, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है?
2: हमने एक ऑनलाइन पोर्टल ले रखा है जिसपे हम सारे मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के मार्क्स हम बच्चों को ऑनलाइन दिखाते हैं ताकि एकदम ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रहे और अगर बच्चों का कोई ग्रीवेंस होता है तो उसके लिए भी वो हमने प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो टीचर के पास जा सकते हैं और यूनिवर्सिटी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको हम बहुत पब्लिसाइज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पूरा ज्ञान रहे, वो गलती से भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उन्हें आगे जाके कष्ट हो।
1: मैम इतना सारा प्रयास आप लोग करते हैं पर मैम स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव जो एक रहता है वो ये रहता है कि वो एग्जाम्स की उन्हें बहुत एंजाइटी रहती है, तो क्या इंस्टीट्यूशन के ऐसे कोई इनिशिएटिव्स हैं जो स्टूडेंट्स की एंजाइटी को कम करने के लिए हेल्पफुल रहे?
2: कॉलेज में हम तीन स्तर पर बच्चों को एग्जाम के दिनों में खास करके सहायता देने का प्रयास। पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा एक फिजिकल सपोर्ट सिस्टम और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिसमें हम इंश्योर करते हैं कूलर्स, एयर कंडीशनर्स जिन कमरों में है उनमें हम एग्जाम की व्यवस्था करें। दूसरे लेवल पे हम देखते हैं कि बच्चों को एकेडमिक हार्डशिप कोई ना हो, हमारे टीचर्स जो हैं, फैकल्टी जो है कॉलेज के वो बहुत अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं। अभी परीक्षा के लिए बच्चे नियमित रूप से नहीं आते हैं तो टीचर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्हाट्सएप, ईमेल, फोन के माध्यम से बच्चों से जुड़े रहते हैं। किसी को लास्ट मिनट क्वेरी डाउट है तो सभी टीचर्स उनको पर्सनल अटेंशन देते हैं उसको करने के लिए। और तीसरा जो है जो कि हम सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउटस्टेशन स्टूडेंट्स हैं जो परिवार से दूर रहकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि उनको एक काउंसलर, एक गाइडेंस दी जाए। उसके लिए कॉलेज ने फुल टाइम काउंसलर को हायर किया हुआ है।
1: तो मैम जब आप स्टूडेंट रही होंगी तब आपका भी एक गोल्डन मंत्रा होगा इन एग्जाम से टैकल करने का जो आज आई एम श्योर आप अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन कर रही हैं, तो गोल्डन मंत्र आपका क्या है?
2: डेफिनेटली जिस दौर में हम परीक्षा देते थे और आज का दौर बहुत अलग है, अब टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के जमाने में स्टूडेंट्स जहां सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं वहां पर कहीं ना कहीं एग्जाम में ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है जो कि हमारे जमाने में हमें नहीं था। लेकिन मैं याद करती हूँ कि मेरा जो मंत्र होता था एग्जाम में वो मेन जो मेरा फोकस होता था वो रिविजन पर, और जब मैं परीक्षा लिखती थी उस समय पे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि हम पहले सवाल का आंसर बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन जैसे जैसे हम पेपर में नीचे बढ़ते हैं समय कम रहता है तो हमारे आंसर्स जो है उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है और रिवीजन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
1: जो मैम सीयूटी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और जो आपके कॉलेज में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज?
2: मैं यही कहूंगी कि कमला नेहरू कॉलेज क्योंकि एक वुमेन्स इंस्टीट्यूशन है तो हम खुले दिल से छात्राओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पूरे देश भर में सीयूटी की परीक्षा दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपको अपना मनचाहा कॉलेज और मनचाहा कोर्स मिले। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जीवन बहुत बड़ा है, अगर आपको आपकी इच्छा के अनुसार एक कॉलेज या एक कोर्स नहीं मिलता तो आपको उससे हताश या निराश नहीं होना चाहिए। जो आप को कोर्स मिल रहा है, जो कॉलेज मिल रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करके और उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए।
1: मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, कॉलेज के बारे में तो बहुत जानने का मौका मिला ही लेकिन साथ ही आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट कार्यक्रम को सुनेंगे उन्हें एग्जाम में कैसे प्रिपेयर हो रहा है इसकी भी जानकारी मिलेगी। मैम से जुड़ने के लिए एफएम रेनबो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाकई में एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम का टाइम जो होता है वो एक तरह से बड़ा ही फेवरिश वाला टाइम होता है। स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं ना, उसका भी एक कहना चाहिए कि उसकी उसकी भी एक पिक्चर जो है ना मन में उभरने लगती है। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, एंड ऑब्वियसली टीचर्स जो है वो आपके बेस्ट गाइड्स होते हैं और वही आपको बताते हैं कि सही तरीका क्या है इन एग्जाम्स को देने का। फिलहाल मेरा काम है आप तक पहुंचाना ये सारी बातें हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वहां के स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जिसे आप सुन रहे हैं ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
7: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
8: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और रेनबो पे चल रहा है वो प्रोग्राम जो है हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के दिल की धड़कन, क्योंकि हम आपको मिलवाते हैं आप ही के अपने फेलो स्टूडेंट्स से, आपके कंटेम्प्रेरीज से, और आप लोग साझा करते हैं एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स, अपने टैलेंट और ये सारी चीजें, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ही तो इंस्पायर हुआ जाता है। स्टूडेंट लाइफ बड़ी ही कहते हैं कि एनरिचिंग होती है, और उसकी वजह ये है कि आपका जो एक्सपोजर होता है, आप जो है दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है ना, वो आपका बड़ा होता है, वो बढ़ता है, और उसी के साथ साथ एक इंसान के तौर पर भी आप बेहतर होते चले जाते हैं और बेहतर जानकारी लेते जाते हैं, बेहतर वर्ल्डली वाइज होते जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना कॉलेज लाइफ का हिस्सा होती हैं, और इसी को कवर करते हैं हम हमारे इस प्रोग्राम में। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची कमला नेहरू कॉलेज, और वहां पे की उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत, और अगली बात किससे की आइए सुनते हैं।
9: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आज अल्फा जेन कैंपस कॉलेज में मैं आई हूँ, कमला नेहरू कॉलेज, और यहाँ की बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के बीच में हूँ जिनके आज एग्जाम है, और एग्जाम के बाद ये सब यहाँ पर इकट्ठी हुई है मेरे साथ। तो एग्जाम डेज जब आपके होते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होता?
10: नमस्कार, मेरा नाम साक्षी द्विवेदी है, मैं BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ। स्ट्रेस तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को होता है, तो जो बच्चे मैंने देखा इंटायर सेमेस्टर क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, वो ज्यादा नर्वस नहीं रहते, वो स्ट्रेस में नहीं रहते। तो सबसे पहला आपका काम यह है कि आप इंटायर सेमेस्टर पढ़िए, ये छोड़ के कि आप एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका जो स्ट्रेस है कम रहता है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट रहता है कि आपने पढ़ा है, तो इसलिए अपने ऊपर आत्मविश्वास रख, आपको योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा अगर आप।
9: बिल्कुल, और कहते हैं कि जो एग्जाम से पहले वाला थोड़ा सा जो स्ट्रेस होता है ना, दैट इज अ गुड स्ट्रेस, क्योंकि वो
10: होगा नहीं तो
9: नहीं होगा तो फिर आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे कर पाओ। एग्जाम में हमारा स्ट्रेस बेसिकली इसलिए होता है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए, और जो अच्छे मार्क्स हैं क्या वही दिखाते हैं कि स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है?
10: बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कभी बार MCQ क्वेश्चन पेपर में हो गए, कुछ बच्चे तुक्का लगा दिए, कुछ अगर थ्योरेटिकल पेपर हो रहा है तो एग्जामिनर पर भी कई बार डिपेंड करता है कि 4 जगह अलग अलग कॉपी जाती है, 4 टीचर्स है, वो अलग अलग तरीके से इवेल्युएट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल लेवल या इंटेलिजेंसी इस बेस पे, उसके एग्जाम के बेस पे चेक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं है।
9: अच्छा ये बताइए कि प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो किसी के लिए ज्यादा जरूरी है लर्न करना, या फिर जो उसका अकेडमिक्स है
10: है उसमें स्कोर करना ज्यादा अच्छा है। तो स्किल तो आजकल जरूरी है। जब हम देखते हैं कि एक्सेल अगर ले लीजिए, अगर हम उसको थियोरेटिकल पढ़ेंगे तो क्या हम फॉर्मूला वो कर सकते हैं कि मैक्सिमम कैसे निकालना है, मिनिमम कैसे निकालना है, लेकिन अगर वो फिर बाद में हमको इम्प्लीमेंट करना होगा तो नहीं है। लेकिन अगर हम थियोरी के साथ प्रैक्टिकल करते हैं, अगर किसी कोई भी थियोरेटिकल पेपर पढ़ते हैं उसके साथ अगर हम प्रैक्टिकल एट अ टाइम करते हैं तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेनिफिशियल है और वो बच्चा फिर पूरे जीवन वो भूल नहीं सकता अगर प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी पढ़ रहा है।
11: तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैथ से बहुत ही डर लगता है, जो मैथ से भागते हैं। तो अच्छा, जो हमारे लिसनर्स हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है, उनके लिए आप कुछ टिप्स बताइए कि उन्हें मैथ्स अच्छा लगने लगे।
10: मैथ्स अच्छा लगने का है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स। मैथ्स कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है, आप उनको लाइए बैठाई, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स।
11: साक्षी, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा और प्रैक्टिस इज द ओनली की जिससे आप मैथ्स को विन कर सकते हैं। जिन लोगों को डर लगता है उन्हें भी ध्यान से सुनना चाहिए कि प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स का भूत खुद ब खुद भाग जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
10: धन्यवाद।
12: मेरा नाम सिमरन है और मैं बीए हिंदी ऑनर्स की छात्र हूँ।
11: हिंदी साहित्य पढ़ती हैं आप, तो आपने भी बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे, कहानियां पढ़ी होंगी। आपका पसंदीदा साहित्य कौन सा है, साहित्यकार कौन सा है जिसे आप पढ़ना पसंद करती हैं?
12: फणीश्वरनाथ रेणु, उनका एक उपन्यास है मैलाचल जो कि मुझे बहुत पसंद है।
11: अच्छा, आप हिंदी ऑनर्स कर रही हैं तो आगे जाकर आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, आपके क्या प्लान?
12: मुझे तो प्रोफेसर बनना है हिंदी ऑनर्स का।
11: तो बताइए टॉप थ्री बिहारी फूड्स के बारे में जो हर डेलीआइट को ट्राई करने चाहिए।
12: लिट्टी चोखा, भुजा चाप और ठेकुआ।
11: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, लाइफ में आप बहुत अचीव करें ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
12: थैंक यू।
11: अच्छा, एग्जाम्स को लेकर ना बच्चों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं और उन मिथ्स की वजह से उनकी परसेंटेज उनके मार्क्स पर बहुत ही फर्क पड़ता है। तो एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनके साथ आइए कुछ मिथ्स बस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका?
13: नमस्कार, मेरा नाम निधि चंदा है और मैं थर्ड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूँ।
11: तो सबसे पहला जो मिथ आपके सामने रख रही हूँ वो है कि स्टडिंग ऑल नाइट बिफोर एन एग्जाम इम्प्रूव मार्क्स, यानी कि अगर हम पूरी रात पढ़ते रहे तो हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे।
13: ये बिल्कुल मिथ है। पूरी रात पढ़ने से हमारे दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तुम कम पढ़ो बट अच्छे से फोकस करके पढ़ो, पूरी रात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
11: तो एक और मिथ है, मिथ कहता है कि म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करो और इससे आपके जो टेंशन भी कम होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी।
13: अगर हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, पढ़ाई और म्यूजिक दोनों साथ में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस, मान लीजिए हम 90% फोकस है, अब 80% दूसरे चीज में चला गया, 10% किसी और चीज में चला गया, तो फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
11: तीसरा मिथ ये है जो कहता है कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेके पढ़ो और ये कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है, ये एक मिथ है या रियलिटी है?
13: मैम, छोटे छोटे में बहुत लोग कंसीडर करेंगे हम 10 मिनट पढ़े 10 मिनट ब्रेक ले, तो ये मिथ है। कम से कम एक घंटे पढ़े 10 मिनट ब्रेक ले।
11: रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक चैप्टर को बार बार पढ़ने से।

0: यानी कि आप रिवीजन कीजिए, जो आपको अच्छे से लर्न है उसे पहले आप रिवाइज कीजिए। एक चैप्टर को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ये मिथ या रियलिटी है
1: मैम। ये है क्योंकि क्योंकि चैप्टर लेंदी होता है, हम एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं कि हम ये देखेंगे तो अच्छा, उसके बैकग्राउंड का जो चीज है वो हमें क्लिक करेगा, हमें याद आ जाएगा। तो चैप्टर को बार बार पढ़ना टाइम वेस्ट, चैप्टर को एक बार पढ़े, नोट्स लिखे, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखे और वो रिकॉल करने का ट्राई करें कि जो पीछे का चीज बताया गया हो उस पॉइंट के पीछे का, ये बेटर ऑप्शन।
0: चलिए भाई, सारे के सारे हमारे मिथ्स बर्स्ट हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लिसनर्स हैं उन्हें भी पता लगा होगा कि पढ़ाई की स्ट्रेटेजी, तो भी स्टूडेंट सुन रहे होंगे कि पढ़ाई की स्ट्रेटेजी एक्चुअली कैसे बनानी है और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए और ये सारे मिथ्स बर्स्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: वाकई में मिथ्स तो बर्स्ट होते ही हैं, लेकिन भाई हमारे स्टूडेंट्स का जो कहना चाहिए जो मन है ना, उसमें उतने ही सवाल और ज्यादा जो है ना आके इकट्ठे हो जाते हैं। आफ्टर ऑल कॉलेज की जो लाइफ होती है ना, उसका कल्मिनेशन पॉइंट होता है एग्जाम्स, और ये एग्जाम्स जो होते हैं ना, ये पूरे साल की तैयारी तो मांगते ही है, मगर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। और एग्जाम ना अगर देखा जाए तो चाहे कॉलेज का हो चाहे जिंदगी का, टिप्स कुछ दो चार वही हैं जो काम आते हैं हमेशा, तो उन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसमें फोकस इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका गोल इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, कितना सही कितना समय देते हैं और कितना क्वालिटी समय देते हैं, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अपनी तरफ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल डायरेक्टली स्टूडेंट्स और टीचर्स की बातें आप तक। हमारा प्रोग्राम है ये अल्फा जन कैंपस कॉलिंग ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो, और कैंपस कॉलिंग हर बुधवार शाम को आप तक पहुंचता है हमारे इस फ्रीक्वेंसी यानी कि आकाशवाणी रेनबो के जरिए 4 से 5 बजे के बीच।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ, और हमारे साथ है हमारी सहयोगी ऋचा पहुंची कमला नेहरू कॉलेज, और वहां उन्होंने एग्जाम्स को जो ना डी स्ट्रेस भी किया, उसके साथ साथ डिकोड भी किया है, और बहुत ही काम की बातें वो आप सभी के लिए लेकर आई हैं। और अगर आपका भी हाल जो है ना कुछ इस तरीके का रहा है कि आधी रात बीत गई है, आंखों के आगे किताब खुली हुई है, मगर दिमाग जो है वो कहीं और

0: घूम रहा है और सुबह के एग्जाम से आपको डर भी लग रहा है और सुबह का पेपर देख के जब रोना आता है ना, उसके बाद में जब निकलते हैं बाहर और डिस्कस करते हैं तो दोस्त कहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाएंगे ना। जी 100% मार्क्स की उम्मीद के साथ हम तैयारी शुरू करते हैं, मगर एग्जाम खत्म होते होते हम कहते हैं चलो पास तो हो ही जाएंगे ना। वाकई में डिस्टिंक्शन के साथ निकलना जो है ना, लाइफ का एग्जाम हो चाहे कॉलेज का एग्जाम, होता थोड़ा डिफिकल्ट ही है, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए होता है सब कुछ आसान। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अगली आवाज ऋचा की, जो आपको सुनवाएंगी कि कमला नेहरू कॉलेज में इस समय एग्जाम का फीवर किस तरीके का है।
1: आज मैं आई हूँ कमला नेहरू कॉलेज और यहाँ की एक टीचर डॉक्टर पूजा यादव मेरे साथ हैं। आप हम कितने समय से यहाँ इस कॉलेज में पढ़ा रही हैं?
2: मुझे 15 इयर्स हो गए हैं।
1: मैम इतना लंबा समय आपने यहाँ गुजारा है, तो आई एम श्योर कि आप जरूर जानती होंगी कुछ ऐसे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स की क्वालिटीज के बारे में जो आपने ऑब्जर्व किया होगा। स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, जिनके जो टॉपर्स होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को डेवलप भी करनी चाहिए अपने अंदर?
2: देखिए, जो भी हमारे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, the best quality they have, they are the most regular students, they are consistent performers, regular hard working students. To usse unka time management, plannings, everything they do properly, so this is the best quality they have, they are regular ones.
1: मैम अक्सर तौर पर हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं ना, टीचर्स उन्हें थोड़ा लाइक करती है, उनके लिए हल्की सी बायस होती है, क्या ये सच बात है?
2: नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बायस होते हैं, लेकिन अब आपको अच्छा तो लगता ही है कोई स्टूडेंट आपको, जब आप कुछ पूछ रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिव, दे आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लासेस, मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस वट एवर यू आर गिविंग देम, अपना समय से सब काम सबमिट कर रहे हैं, तो दे डिजर्व दिस।
1: एब्सोल्युटली मैम, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्या ये कहना सही रहेगा कि जो बच्चों के मार्क्स हैं वो उनका ट्रू पोटेंशियल दिखाते हैं?
2: नहीं, ये सच नहीं है कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे हम ये आकलन नहीं कर सकते।
1: तो एक अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा आपकी नजर में क्या है कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए?
2: बीइंग अ टीचर, हम जब रेगुलर बेसिस पे हम स्टूडेंट को देख रहे हैं, जैसे हम कंटिन्यूअस असेसमेंट के बेसिस पे हम जज कर पाते हैं कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, लॉजिकल बिहेवियर क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो लॉजिकल टर्म्स पे डिपेंडेंट है, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर देयर वीकनेस, हाउ दे react in the peer groups, in the team work. So on this basis we can find out which student is good.
1: क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, मुझे पता है उन्हें पता लग गया होगा कि हाई परफॉर्मर वो भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए रोज कॉलेज आना होगा, टीचर्स के जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें फॉलो करना होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने बल्कि अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: माई नेम इज डॉक्टर अमित सोनी, आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश।
1: सर अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपको कितना समय हो गया इस कॉलेज में पढ़ाते हुए?
3: आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2010, इट्स बीन ऑलमोस्ट 16 इयर्स।
1: सर 16 साल से आप पढ़ा रहे हैं, आप जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं वो चेक करते होंगे, मेरे साथ साथ मुझे लगता है सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से मार्क्स होते हैं जो हम लोग सही करके आते हैं फिर भी कट जाते हैं, जो कॉमन गलतियां बच्चे करते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते कि हम क्या गलत कर रहे हैं।
3: देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में दो या तीन पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं, उससे क्या होता है कि किस क्वेश्चन को एक आंसर कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर सकते।
1: सर एक और चीज है कि अक्सर तौर पे हमने ये कहते हुए सुना है कि भगवान करे जब आपका एग्जाम जो एग्जामिनर चेक कर रहा हो उसका मूड अच्छा हो तो उसका आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बताइए बड़ी जेन्युइनली हमारे लिसनर्स को भी, पेपर चेक करते वक्त क्या सच में टीचर्स का मूड डिपेंड करता है उस पे?
3: आई डोंट अग्री विद दिस, क्योंकि देखिए इन द फर्स्ट प्लेस कोई भी एग्जामिनर है, इवेलुएटर है, उसको ये पता है, बिकॉज वी ऑल हैव बीन स्टूडेंट्स इन आवर लाइफ, है ना, एंड हमारे दिमाग में भी यही चीज थी। और हम कई बार बोलते थे, हे भगवान, जब मेरी स्क्रिप्ट आए तो मेरे एग्जामिनर को कोई अच्छी गुड न्यूज मिले
1: तो वो
3: दिल खोल के मार्क्स देंगे। सिंस यू नो दैट व्हेन आई बिकेम अ टीचर एंड आई बीन इवेल्युएटिंग ओवर द इयर्स, थिंकिंग जो है मेरे माइंड में कभी नहीं आई।
1: ठीक है, आज बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंची होंगी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली। तो हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद, थैंक यू।
4: नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर शुभ्रा सिन्हा, मैं इतिहास विभाग से हूँ।
1: मैम आजकल एग्जाम टाइम चल रहा है, बच्चों को तो स्ट्रेस हो ही रहा है, साथ में उनके पेरेंट्स को भी स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे

0: पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं?
1: देखिए, जो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो घर का वातावरण बिल्कुल अनुकूल बनाए, स्ट्रेस फ्री रहे, उन पर किसी तरह का दबाव ना रहे। और एक आजकल जो बहुत आम होती है ना, हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम तुलना करने लगते हैं कि भाई फलाने के बच्चे ने ऐसा किया, तुम ये नहीं कर रहे हो। कृपया करके इस तरह का वातावरण ना तैयार करें घर में। जितना आप माहौल स्ट्रेस फ्री रखिएगा उतना ही वो अच्छा रहेगा। और एक जो है इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको पता है एज अ पेरेंट, आपको पता है कि आपके बच्चे जो है उसका लेवल क्या है। तो जो बहुत हाई अचीवर नहीं है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हाई अचीव करे। मुझे एक लगता है कि एक कॉन्फिडेंस बच्चों में यह देना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे और तुम जैसा करोगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। सुधार करने की अगर गुंजाइश होगी तो हम सुधार करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, रण क्षेत्र में लड़ने नहीं जा रहा है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आप जितना शांत वातावरण अनुकूल माहौल रखिएगा।
0: टीचर का माइंडसेट क्या होता है जब वो एक क्वेश्चन पेपर बना रहा होता है? तो वो ये सोचता है कि मैं टफेस्ट क्वेश्चन दूं, या वो ये सोचता है कि मैं इजी क्वेश्चन दूं जिसे सारे अटेम्प्ट कर पाए? तो एक क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त एक टीचर का माइंड क्या कैसे चल रहा होता है?
1: ऋचा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम हाई परफॉर्मर के लिए क्वेश्चन सेट करते हैं
0: जी।
1: फॉर एग्जांपल, अगर हमने 8 क्वेश्चन दिए हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि 4 क्वेश्चन ऐसे हों जो कि हर कोई आंसर कर सके। पर 4 क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि वो टफ नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा देते हैं, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों में उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है कि नहीं।
0: तो यानी मैम, अगर स्टूडेंट रेगुलर आए और अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करे तो वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैम। एक प्रॉब्लम और मैंने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व की है, वो कि लास्ट मोमेंट पर वो टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं, बाकी सोर्सेज देखते हैं बजाय अपनी बुक्स और टेक्स्ट बुक देखने के। इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
1: ये बिल्कुल समझ में हमें आ जाता है कि ये AI और ChatGPT का ये देन है। ये बिल्कुल समझ में आता है। देखिए, जब हम पढ़ाते हैं, खास करके अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही अलर्ट हो, तो जो भी हम क्लास में लेक्चर लेते हैं और अगर वो जॉट डाउन कर रहा है तो वो उसके आंसर में रिफ्लेक्ट होता है।
0: बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत सारी जानकारी भी मिली। आई एम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट इस वक्त इस कार्यक्रम को सुनेंगे वो एक टीचर का पर्सपेक्टिव भी उनके सामने बहुत क्लियरली आ चुका होगा। हमसे बात करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिचा।
2: आज मैं आई हूँ कमला नेहरू कॉलेज और यहाँ की गर्ल्स के बीच में हूँ। मेरा नाम भूमि भंसाली है और मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ।
0: तो चलिए एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। अर्ली मॉर्निंग स्टडी और लेट नाइट स्टडी?
2: लेट नाइट स्टडी।
0: नोट्स और टेक्स्ट बुक्स?
2: टेक्स्ट बुक।
0: ऑनलाइन लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग?
2: आई थिंक आई विल प्रेफर क्लासरूम स्टडीज विद ऑनलाइन रिसोर्सेज एज वी मूव फॉरवर्ड फॉर द डिजिटल इंडिया थिंग। आई थिंक आई वुड रादर सपोर्ट इट।
0: MCQs और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस?
2: डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस।
0: Long study hours or smart note based study?
2: If it's before examinations, definitely smart learning through notes. Otherwise, I'll always prefer textbook learning with long hour study.
0: Okay, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि जब एग्जाम में आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करती हैं?
2: Honestly, मुझे स्कूल तक स्ट्रेस होता था बहुत ज्यादा, बिकॉज बोर्ड्स के लिए सब बहुत ऐसे करते थे। बट जब से मैं कॉलेज में आई हूँ, आई हैव एक्चुअली मैनेज्ड कि मुझे कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। तो एग्जाम से पहले आई वुड रादर पुट माई एनर्जी इन टू स्टडिंग देन एक्चुअली पुटिंग इन टू समथिंग जो मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है। तो स्ट्रेस मैं नहीं लेती हूँ, और अगर मुझे बाई चांस अगर स्ट्रेस हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्विक ब्रेक लेती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, आई लिसन टू सम काम म्यूजिक।
0: एग्जाम स्टेज चल रहे हैं तो ऐसे में हर जगह एग्जाम की बात हो रही होगी ना, कि घर पे भी पेरेंट्स बोलते होंगे पढ़ाई करो, स्कूल में भी, यहाँ पे भी, कॉलेज में भी टीचर्स कहते होंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग खुद भी एग्जाम मोड में। चलिए एग्जाम मोड से बाहर निकलते हैं और माय टॉप थ्रीज इज अ गेम वो आपके साथ प्ले करते हैं। ओके, तो आजकल सिविक सेंस की बहुत बात होती है सोशल मीडिया पे और लोगों को लगता है कि बहुत लोगों में बिल्कुल जीरो सिविक सेंस है। ऐसे में ऐसे कौन से टॉप थ्री सिविक सेंस है जो इंडियंस को अपने अंदर डेवलप करने चाहिए?
2: सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन एंड सिविक हाइजीन बहुत, और दूसरा मेरा होगा रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी, और तीसरा मुझे लगता है जो थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर में आ जाता है विच इज कंसिडरेशन फॉर अदर्स। किसी को ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है तो इंस्टेड ऑफ मॉकिंग देम क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? कोई क्यू में खड़ा है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, क्या हमें उन्हें मदद कर सकते हैं? बिकॉज मुझे लगता है एज सोसाइटी वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड बियॉन्ड जस्ट अबाउट आवरसेल्फ। तो उसके अलावा हम चीजें करेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर सोसाइटी।
0: वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, थ्री लर्निंग्स ऑफ योर लाइफ?
2: सबसे पहले तो फॉरगिवनेस। मैंने बहुत लोगों को देखा है ग्रजेस रखते हैं. मुझे लगता है कि फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर द थिंग्स यू कुडंट कंट्रोल. तो सबसे पहला तो खुद को माफ कीजिए फॉर द थिंग्स जो आपने गलतियां भी करी है, आगे बढ़िए और उनसे सीखिए. दूसरा मैं कहूंगी हार्डवर्क एंड काइंडनेस नेवर गो वेस्टेड. लोगों को लगता है कि मैं इतनी काइंड क्यों बनूं या फिर मैं हार्डवर्क क्यों कर रही हूं जब कोई शॉर्ट ट्रिक अपना के आगे जा रहा है. बट मुझे लगता है कि उससे जो आप सीखते हो ना, जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं क्यों करूं, यू शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट एंड डू, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा. तो काइंडनेस एंड हार्डवर्क नेवर गो वेस्ट. और तीसरा मेरा होगा, यू नो व्हाट, लोगों को लगता है कि कंपैरिजन करते हैं और अपनी लाइफ को कंपटीशन की तरह लेते हैं. आई थिंक द ओनली कंपटीशन यू शुड हैव इज योर ओन सेल्फ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप फोकस करिए, डिटरमाइन रहिए अपने गोल पे, काम करिए एंड यू विल रीच वेर यूर सपोज.
0: एवरी टाइम ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन देन बिफोर.
2: या इट्स जस्ट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट अदर्स. यू हैव टू रीच टू योर डेस्टिनेशन. तो किसी और से कंपेयर करना इज बेस्ट.
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात कही आपने. और चलिए, आपके टॉप थ्री फूड्स क्या है जो आपको स्ट्रेस फ्री कर देते हैं?
2: नंबर वन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट माई मॉम कुक. कुछ भी बनाए वो, दाल चावल, इवन शी मेक्स द बेस्ट साउथ इंडियन फूड, तो मम्मी के हाथ का खाना. दूसरा होगा जंक में मुझे पास्ता बहुत पसंद है, और स्ट्रीट स्टाइल फूड में मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है. आई थिंक एवरी गर्ल वुड अग्री.
0: आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला हमारे लिसनर्स को आपसे बात करके. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए.
2: थैंक यू.
0: तो टॉप थ्रीज की अभी बात हो रही थी हमारी, और एक और स्टूडेंट हमारे साथ है. क्या नाम है आपका?
3: हेलो, माय नेम इज हंशिका और मैं बीए संस्कृत ऑनर्स की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट.
0: अच्छा, ये बताइए कि आपकी बेस्ट थ्री मूवीज कौन सी हैं जो आपको बहुत ही इंस्पायर करती हैं और आपकी सभी यहाँ बैठी हुई फ्रेंड्स को जरूर देखनी चाहिए एक बार?
3: वैसे तो मैं मूवीज इतना नहीं देखती हूँ, बट मेरे को 12th फेल और थ्री इडियट्स मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मूवी लगती है.
0: थ्री बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ?
3: माई मदर, माई फादर एंड माई टीचर.
0: एग्जाम्स चल रहे हैं आपके, तो मुझे बताइए कि एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है पढ़ाई के लिए? कैसे पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप कैसे प्रिपेयर करती है अपने आपको?
3: जो टीचर रोज पढ़ाती है तो उसको रोज रिवाइज करो ताकि वो आपको ध्यान रहे. लेकिन जब एग्जाम्स के पहले या जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको याद रहता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है. एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, तो आप इजिली उसे कर पाते हो. यानी कि जो डेली पढ़ा रही है टीचर उसको डेली की डेली कम्प्लीट कर.
0: और जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं जिनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, उन्हें अगर एक मैसेज देना हो आपको, तो आपकी तरफ से मैसेज क्या होगा?
3: टाइम मैनेज अपना बहुत अच्छे से करो. रोज जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको टाइम टू टाइम कम्प्लीट करो, बैकलॉग मत रखो. क्योंकि अगर बैकलॉग रखते हो तो बहुत ज्यादा एकदम लास्ट में हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता कि ये क्या हो गया, काश पहले पढ़ लेते. वो काश नहीं रहना चाहिए.
0: चलिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है आपकी और उम्मीद करते हैं अंशिका कि आपकी तरह ही बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आए और आप भी बहुत अच्छा स्कोर करें. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए.
3: थैंक यू मैम.
4: हेलो, मेरा नाम निधि पांडे है फ्रॉम बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर.
0: अच्छा, कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत ही करीब होते हैं और वो गाने जो हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं. क्या कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप सुनते हो ड्यूरिंग एग्जाम और वो आपको बहुत मोटिवेट करता हो?
4: हाँ, मेरे एग्जाम के टाइम मेरे को आरंभ है प्रचंड सॉन्ग है जो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, बिकॉज उसमें ऐसी मतलब लिरिक्स हैं या लाइंस हैं जो बहुत मोटिवेशन है आपको खुद से दोबारा. अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गए हो, आपके इस एग्जाम पे स्ट्रेस है, तो आपको दोबारा से उठाते हुए बताते कि नहीं, अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप कर सकते.
0: आपकी लाइफ की कोई ऐसी लर्निंग आपको आपके पेरेंट्स ने दी हो या टीचर ने दी हो जो आपको लगता हो कि जब कभी आप हार रहे हो, जब कभी सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, तो आपको वो लाइन याद आती है एक बार फिर से रीस्टार्ट करने के लिए?
4: हाँ, मुझे मेरी मदर ने भी बताया है और मतलब बहुत लोगों ने मुझे बताया है, सीख दी है कि आपको पेशेंट रहना, मतलब पेशेंट बहुत रहना चाहिए और आपको खुद पे काम करना चाहिए. अगर आपसे कोई चीज खराब भी हो रही है तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि अगर कोई चीज खराब हो रही है तो आप दोबारा उसको सही ना कर सको.
0: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
4: धन्यवाद.
5: नमस्कार, मेरा नाम निशा है, मैं बीए हिंदी ऑनर्स की छात्र हूँ.
0: क्या बात है, आप हिंदी पढ़ रही हैं, तो उम्मीद है कि आपने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे. चलिए, हमें भी कोई कविता सुनाइए.
5: मैंने पुष्प की अभिलाषा बहुत ज्यादा पढ़ी है क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है.
0: ये तो मुझे भी बहुत पसंद है.
5: चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठ लाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ में देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक.
0: बहुत बहुत बढ़िया. अच्छा, रेडियो सुनती हैं आप?
5: यस मैम.
0: कौन सा रेडियो स्टेशन सुनती हैं आप?
5: FM रेनबो.
0: तो कौन से प्रोग्राम आपको बहुत पसंद है?
5: सुप्रभात, ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है।
0: बिल्कुल, दिन की शुरुआत अगर सुप्रभात से हो तो दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। और शाम को भी कुछ सुनती हैं?
5: हाँ, मैसेज मसाला, जिसमें हम अपने दोस्तों को संदेश भेजते हैं।
0: वाओ, ये प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम तो एक्चुअली मेरे भी बहुत ही फेवरेट है। और अगर आप भी अपने लोगों को संदेश भेजना चाहते हैं तो

0: मैसेज मसाला मिक्स 9868107070 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने संदेश अपनों को भेज सकते हैं। अच्छा, आप लोग सबके एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल, और एग्जाम्स में हम सभी को बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए, तो ऐसा कौन सा सॉन्ग है, क्योंकि म्यूजिक सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, तो ऐसा कौन सा गाना है जो आपके स्ट्रेस को दूर करता है?
1: रुक जाना नहीं।
0: तो चलिए हम सब मिलके, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है, कोशिश करते हैं कि आपका स्ट्रेस बस्ट हो, इस गाने को गुनगुनाते हैं। रुक जा

0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना गाया आप सभी ने, और आप सभी को आपकी मंजिलें मिले ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
1: आकाशवाणी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का है ये कोलैबोरेशन, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन जो आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। एग्जाम्स के बारे में बहुत सी बातें हमने सुनी आज, बहुत सारे टिप्स भी मिले आपको, बहुत सारे मिथ्स भी बर्स्ट हुए, लेकिन चलते चलते आपको एक प्रोफेसर का पर्सपेक्टिव दे जाती हूं, क्योंकि एग्जाम्स की ना एक फनी साइड भी होती है। तो जरा गौर फरमाइए कि पूरा साल ये कैंटीन में बिताते हैं, पूरा साल ये कैंटीन में बिताते हैं, एग्जाम्स आते ही मेरे पैर दबाते हैं, कहते हैं सर कृपा कर दो इस बार, शुरू से ही मेहनत कर लेंगे हम अगली बार, पर नेक्स्ट टाइम फिर यही दोहराते हैं, स्टूडेंट्स हैं अपनी मस्ती से बाज कहाँ आते हैं, हर बार यही प्रोमिसेस करते हैं और हर बार फिर यही कहानी दोहराते हैं। देखा जाए तो कुछ गलत नहीं कहा गया है इसमें, लेकिन हाँ फिलहाल आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर चुके हैं तो भी, और अगर कर रहे हैं तो भी, मुझे यकीन है कि आप इस प्रोग्राम को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन आज का था बस यहीं तक। कमला नेहरू कॉलेज से हमारी सहयोगी पहुंची ऋचा वर्मा वहां पर, और वहां से उन्होंने आप तक पहुंचाई ये सारी बातचीत। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम जो है मैं यहीं पर समेटती हूँ। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के

0: इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री था गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमें बोले न करूति न करूँ

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर

0: कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत
3: प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स द यूथ ऑफ इंडिया एज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट देयरफॉर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स विद स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर स्पोर्टिंग नेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड हैज डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल साइंटिफिक कैपेबिलिटीज थ्रू मिशंस सच एज चंद्रयान।
1: क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
2: Mr. Vaishnav said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A

0: পঢ়ি আপুনি নিশ্চয় ভাল পায়। উপন্যাস বা গল্পৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিশ্চয় আগ্ৰহ আছে। বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীয়ে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে উপন্যাস পাঠৰ এটি মনোৰম অনুষ্ঠান। প্ৰতি পুৱা 9 বজাত এতিয়াৰ পৰা শুনিবলৈ পাব ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠান। ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠ বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীত প্ৰতি পুৱা 9 বজাত FM-ৰ 100.8 MHz।
1: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক, অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
2: Our voice gets you heard everywhere.
1: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
2: 6900453528।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
4: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তাঃ শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰবাচকঃ পুনীত ত্ৰিপাঠী। আদৌ মুখ্য বাৰ্তাঃ। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। वस्त्राणां कृते PLI योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 96 समवायविशेषाः सर्वकारेण अनुमोदिताः। प्रायः 13,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशः प्रतिबद्धः। रक्षामन्त्रालयेन नौसेनायाः कृते 20 उन्नत जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं प्रायः 500 कोटि रूप्यकाणाम् अनुबन्धः स्वीकृतः। अफगानिस्तानदेशे पाकिस्तानस्य वायु आक्रमणेन 11 बालकैः सह न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। अपि च ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य PV सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य लोकतान्त्रिकरूपेण निरन्तरतया सेवायमानः दीर्घतमः प्रधानमन्त्री अवदत्। श्रीमोदी 14-2000 वर्षे मई मासस्य 26 दिनाङ्के शपथग्रहणं कृतवान् आसीत्। सः पण्डित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य कीर्तिमतम् अतिक्रमितवान्, यो हि प्रथमवारं 25-29 वर्षे मई मासस्य 13 दिनाङ्के निर्वाचित प्रधानमन्त्रिरूपेण शपथं स्वीकृत्य 64-29 वर्षे मई मासस्य 27 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यम् अकरोत्। पण्डित नेहरू वर्यस्य निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन कार्यकालः 98-300-4000 दिनानि यावत् आसीत्। इदानीं प्रधानमन्त्रिणः मोदीवर्यस्य अविरत कार्यकालः 99-300-4000 दिनानि यावत् अस्ति, येन सः भारतस्य इतिहासे दीर्घतमं कालं यावत् कार्यं कुर्वन् निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अस्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायिविश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः, वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः, कृषि कृषक कल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानेत्यादयः केन्द्रीयमन्त्रिणः स्वतन्त्रभारतस्य दीर्घतमनिरन्तरनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रिय विकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायिविश्वासं च प्रतिबिम्बयति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण, पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन, ऊर्जा मन्त्रिणा मनोहर लालेन, रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन विज्ञानप्रौद्योगिकीमन्त्रिणा जितेन्द्रसिंहेन संस्कृतिपर्यटनमन्त्रिणा गजेन्द्रसिंहशेखावतेन विधिन्यायमन्त्रिणा अर्जुनराममेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्। अद्य राष्ट्रियराजधान्यां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य सभायां मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः अपि प्रधानमन्त्रिणं मोदिवर्यं सभायाम् उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः। विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। श्रीलंकादेशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं वैश्विकदक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिं च प्रशंसितवन्तः। वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा पीएलआई इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्य अन्तर्गतं द्वाविंशति नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि। वस्त्रमन्त्रालयः अवदत् यत् योजनायाः तृतीयचक्रस्यान्तर्गतम् आहत्य 96 समवायविशेषाः चिताः सन्ति, येषु 20,800,000,12,000 कोटिरूप्यकाणां प्रतिबद्धनिवेशः 85,000,000 कोटिरूप्यकाणां प्रत्याशितव्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते 20 एनहान्स्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49,400,000 कोटिरूप्यकाणां अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्य अन्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पाञ्च निरूपयति।
5: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
4: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
4: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,100,000,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
4: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मन्त्री हरदीप सिंह पुरीवर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य सीएनजी इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च एलपीजी सम्पर्कान् पीएनजी सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
6: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
4: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पत्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लंघनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गुलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: बातरी पासते उभति आहिसु जुबबानीर स्टुडियोर मजियालय। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডিআৰএম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো লীনা বৈশ্যৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত খেয়াল।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल है। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7

0: इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के दो सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉ. सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. The Union Cabinet today passed resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत
3: प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स द यूथ ऑफ इंडिया एज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट देयरफॉर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर स्पोर्टिंग नेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स थ्री लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड हैज डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल साइंटिफिक कैपेबिलिटीज थ्रू मिशंस सच एज चंद्रयान
2: क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: Mr. Vaishnaw said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. He said the cabinet also approved central government office complex and central government residential complex in Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Minister today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS Jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The government has approved extension and validity of the credit guarantee scheme for microfinance institutions.

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে লতা মংগেশকাৰৰ কণ্ঠৰ ভজন শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ ফুৰ খন্তেক পছতে সমাচাৰ সন্ধিয়া আকাশবাণী দিল্লী।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধিয়া কে সাথ মে প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है।

0: है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़

0: रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेली लोन न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर

0: कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Viksit Bharat and the